0: मिंगा चुवे तै तौ कासना नल्ली वो सिंतिरिस पा समूह बने का नचा रिकुस पा लिखा वांगी मंग
1: अरे अरे चैता से तनिंगा पा समूह याने हम पिन नहीं चैता का न्यापा से कचा मुसे से छम भी सुन से मर चे ऑफिशियल लिखे रो यल चिम भी तब वाको चिल का कुन मकोस न्याचा की कंसे थे
0: निका कई बिन रिस्तो मारे तैता माइटो
1: या या सिना कचा रिसुंगा स्ता कुनास स्ता